अंकल, या नक्कल द जोड़े था, तुंगा में था, जोड़ा के पे, याने ना रोंबा तंबुड़ी